0: Your news from here
1: and hits from home.
0: SBS South Asian.
2: चलो आखिरी मुलाकात को यादगार बना देते हैं, जाते जाते तेरा ये वहम भी मिटा देते हैं। एक ही खासियत थी तुम में कि तुम्हें हम चाहते थे, आज तक यही झूठ कहा था तुमसे। चलो अब सच बता देते हैं।

अभी आप ताज़ा तरीन खबरें सुन रहे थे, ये मुख्तसर खबरों का बुलेटिन हम रोज़ाना आपके लिए वर्किंग डेज़ में लेकर आते हैं। सुपहर 3 बजे हमारे फेसबुक पेज पर भी ये पब्लिश होता है। और जो खबरें आपने सुनी उनमें एक डेवलपिंग स्टोरी थी वन नेशन की सरबरा पॉलिन हैंसन की प्रेस क्लब में तकरीर के बारे में, उन्होंने जो कुछ कहा उसमें एक ये इजाफी नोट आपके लिए और मालूम के तौर पर शामिल कर रहे हैं कि वन नेशन की सरबरा पॉलिन हैंसन ने आज प्रेस क्लब में खिताब के दौरान जहाँ कई मौजूद पर इजहार ख्याल किया, वहाँ उन्होंने बरसर इकदार आने की सूरत में SBS को ख़त्म करने की पॉलिसी का भी ऐलान किया। इसके अलावा वर्ल्ड कप की भी बहुत सारी खबरें हैं, जैसे कि अभी आपने अर्जेंटीना के मैच के बारे में सुना और मैसी ने 3 गोल यानी हैट्रिक की और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और इस वक्त उर्दन और ऑस्ट्रिया के दरमियान मैच जारी है, और अगर मैच के खात्मे तक और हमें सूरत हाल मौसूल हो गई तो हम वो भी आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके अलावा भी आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ शामिल है। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन में आप सुन सकेंगे कि चंदा देने या चैरिटी के कामों के लिए ऑस्ट्रेलिया में क्या उसूल जवाबित हैं। इसके अलावा आपको पाकिस्तानी शहर चकवाल में होने वाले एक अफसोसनाक वाक़े की तरफ भी ले चलेंगे और उस हादसे में जहाँ वाहक होने वाली 9 साल बच्ची के वालिद से आपको उनकी बातचीत भी सुनवाएंगे। पाकिस्तान भी लिए चलेंगे और पाकिस्तान की सालिसी से अमरीका ईरान माहदे का जिक्र रहेगा। ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पाकिस्तान के क्या हालात हैं उसकी बात होगी, और इमरान खान को जेल से अस्पताल क्यों मुंतकिल किया गया, ये तमाम बातें पाकिस्तान रिपोर्ट में सुन सकिएगा। इसके अलावा भी कई मौजूद का अहाता करते रहेंगे, गीत गज़लें और नगमे भी प्रोग्राम में शामिल रहेंगे, मगर ये सब कुछ इस वक्फे के बाद। लेकिन वक्फा लेने से पहले क्यों ना आपको एक गीत की तरफ लिए चले। जी हाँ, ये गीत आपको सुनवा रहे हैं जो जिमी खान और रहमा अली की आवाज़ में है और इसका टाइटल है नदिया। और ये गीत 2017 में कोक स्टूडियो में बड़ा सुपरहिट हुआ था। लीजिए आप भी सुनिए।

0: SBS South Asian. New news from here and hits from home.
1: दुनिया भर से कशीदगी हुई अहम कौमी और आलमी खबरें तफसील से सुनिए मोबाइल ऐप या sbs.com.au/news/audio पर। इनसाइड SBS का हालात हज़रा का एवार्ड याफ्ता शो उन जुर्रतमंदाना मौजूआत को जेर बहस लाता है जिस पर कोई और बात नहीं करता। देखिए SBS पर इनसाइड मंगल 8:30 बजे या किसी भी वक्त SBS ऑन डिमांड पर।
2: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS Audio app or website.
3: SBS Audio.
4: Play button दबाइए, नई दुनिया पाइए.
5: 了解澳大利亚，准备好了吗
6: ？SBS Chill.
7: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
10: Far from the partisan politics.
11: 60 से ज़्यादा ज़बानों में खबरें, दिलकश मूसीकी, पसंदीदा पॉडकास्ट, सौतों आहंग की दुनिया तक पहुँचने के लिए SBS Audio App डाउनलोड कीजिए.
3: sbs.com.au/audio.
1: आप हैं SBS उर्दू की नशरियात के साथ और जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे बहुत से ऐसे सेगमेंट होते हैं जो हम प्रोग्राम में शामिल नहीं कर पाते क्योंकि रोज़ाना हम आपके लिए कुछ फीचर्स और इंटरव्यूज़ पॉडकास्ट और दिलचस्प खबरें लेकर आते हैं मगर प्रोग्राम में वक्त की किल्लत होती है तो इसलिए अगर आप हमारा प्रोग्राम के किसी पॉडकास्ट को मिस नहीं करना चाहते तो उसके कुछ तरीके हो सकते हैं उनमें बेहतरीन तरीका ये है कि आप sbs.com.au/urdu पर जाइए जहां हमारे तमाम पब्लिशशुदा पॉडकास्ट आपको मौजूद मिलेंगे। इसके अलावा हम फेसबुक पर भी पोस्ट करते हैं ये तमाम पॉडकास्ट और आर्टिकल और वीडियोस। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं और यूट्यूब भी हम मौजूद है साउथ एशियन चैनल पर SBS उर्दू का तो वो भी आप देख सकते हैं मगर एक और तरीका है मोबाइल एप्लीकेशन का यानी हमारी मोबाइल ऐप SBS ऑडियो के नाम से मुफ्त मौजूद है एंड्रॉयड और एप्पल डिवाइसेस के लिए। आप उस पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं उसको फ्री बिल्कुल इंस्टॉल कर लें और उस पर उर्दू लैंग्वेज आप सेलेक्ट करके अपनी प्रेफर्ड या पसंदीदा लैंग्वेज बना लें फिर आप हमारा कोई पॉडकास्ट मिस नहीं करेंगे और हमारा लाइव शो भी उस मोबाइल ऐप पर सुना जा सकता है। आइए अब आपको लिए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन या खुश आमदीद ऑस्ट्रेलिया की तरफ। अगर आप चंदा दे रहे हैं या ख़ुद रकम जमा कर रहे हैं या ऑनलाइन क्राउड फंडिंग अपील कर रहे हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलिया में खैराती और फंड रेजिंग का निज़ाम कैसे काम करता है और यही मौजू है ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन का। पेश कर रही हैं वरदा वकार।
12: आप ऑस्ट्रेलिया को जानने में मदद के लिए SBS ऑडियो का तैयार करता पॉडकास्ट ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन सुन रहे हैं।
13: सामईन किसी ऐसे मकसद के लिए मदद करना जो आपके दिल के करीब हो दिल को खुशी देने वाला महसूस होता है लेकिन आप कैसे जान सकते हैं कि कोई चंदा इकट्ठा करने वाला कानूनी तौर पर दुरुस्त काम कर रहा है और आप किस तरह चंदा इकट्ठा करने की तशहीर कर सकते हैं। खुशामदीद ऑस्ट्रेलिया की इस किस्त में हम आपको ऑस्ट्रेलिया के कानून जो चंदा इकट्ठा करने के बारे में हैं की वजाहत देंगे ख्वाह आप किसी खैराती मकसद के लिए अतिया

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Punjabi on mobile, online, and on radio.
1: Tusi SBS Punjabi naal mobile, online, ade radio dwara jude ho.
2: जी आयनु जी एस बी एस के पंजाबी प्रोग्राम में तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। अज है जी दिन बुधवार जून महीने की 17 तरीक ते सिडनी तो मैं जसमीत कौर लैके हाजिर हाँ तुहाडा अपना एस बी एस पंजाबी प्रोग्राम। सारे सुन रहे स्रोतियां नू प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्कार आदाब ते हैलो जी। प्रोग्राम शुरू करन तो पहला असी उन्हां सारे परंपरागत मालकां नूं माण देना चाहुंदे हाँ जिन्हां दी धरती तों असी अज दा इह प्रोग्राम प्रसारित कर रहे हाँ। पंजाबी प्रोग्राम कामराई गलोकां ते उन्हां दे बुजुर्गां दीआं मौजूदा अते पिछलियां पुश्तां नूं सत्कार दिंदा है। असी उन्हां सारे रवायती मालकां अते आदिवासी ते टोरेस्ट्रेट आइलैंडर खित्तियां नूं वी सत्कार पेश करदे हाँ जिथों तुसीं साडा अज दा इह प्रोग्राम सुन रहे हो। प्यारे दोस्तों उम्मीद है तुहाडा अज दा दिन सुकून भरिया लंघ रहा होगा। तुसी आपो अपने कामकार नवेड़न दे नज़दीक होंगे ते अज दे दिन दे सूरज नूं ढालदा देख रहे होंगे ते उम्मीद आ कि इस खूबसूरत जी शाम विच तुसी एस बी एस पंजाबी प्रोग्राम नूं अपने दिन दा हिस्सा बना रहे होंगे ते अपने किसी दोस्त मित्र या परिवार नाल सांझा भी कर रहे होंगे ते जे नहीं कर रहे तो जरूर कर दिओ क्योंकि अज दे प्रोग्राम विच जिस मेहमान नाल आपां गल्लबात करनी आ उह कल तों सोशल मीडिया उत्ते छाए होए हन। जेकर तुसी सोशल मीडिया ते नहीं हो तो मैं तुहानू दस दिनी हाँ कि फीफा वर्ल्ड कप विच पहली बार एक सिंह नामी पंजाबी नौजवान खेडदा नज़र आया है जी। न्यूजीलैंड की टीम वल्लों खेड रहा नौजवान खिडारी सरप्रीत सिंह जो ऑकलैंड विच ही जमया पलिया है। न्यूजीलैंड का पहला मैच ईरान नाल सी ते इस तो पहला मैनू सरप्रीत नाल गलबात करन दा मौका मिलिया जिस विच अपने पंजाबी पछोकड़ ते माण महसूस करदे होए उन्हां काफ़ी सारियां गल्लां बातां कीतियां जो कि मैं तुहानू अज दे इस एस बी एस पंजाबी प्रोग्राम विच सुनावांगी। पर इस तो पहला मैं जरूर जानना चाहांगी कि की तुसी फुटबॉल फैन हो। इस वर्ल्ड कप दे केड़े केड़े मैचेस तुसी एस बी एस उत्ते देखे हन जां केड़े मैचेस लई तुसी बेसब्री नाल इंतज़ार कर रहे हो। शायद तुसी क्रिस्टियानो रोनाल्डो दे फैन होवो या फिर मैसी दे ते आस्ट्रेलियन टीम विचों तुहानू सब तो वधिया खिडारी केड़ा लग रहा आ। इन्हां विचों किसी भी सवाल का जवाब तुसी दे के सानू एस एम एस भेज सकते हो ते जेकर तुसी फुटबॉल दे विच ज़्यादा दिलचस्पी नहीं भी रखते तां वी तुसी सानू जरूर स्नेहा भेज जो ते आज दे प्रोग्राम विच अपनी हाजरी लवायो। स्नेहा भेजण लई नंबर है जी 0448-799-767 0439-799-767। जे गल अज दे प्रोग्राम दी करिए तां अज जाणांगे फीफा वर्ल्ड कप दे 5वें दिन दीआं अपडेट्स।
3: काबो वाडे ने विश्व कप इतिहास विच सब तों वड्डे उलटफेरां विचों इक कर विखाया।
2: फेर डिग्री जां ट्रेड केड़े प्रोफेशन विच ज्यादा आमदन है ओहदे उत्ते चर्चा होवेगी।
4: इसे कारण ट्रेडां दी मंग अते तनखा दोवें वध रहे हन अते इस दा असर सिख्या प्रणाली विच वी दिखाई दे रहा है।
2: अज दी खास गल्लबात न्यूजीलैंड दी फीफा वर्ल्ड कप टीम दे खिडारी पंजाबी नौजवान सरप्रीत सिंह नाल करांगे।
5: So yeah, मैं पूरी कोशिश करदा, मेहनत मैं रोज करदा so that I can perform well.
2: ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਜਾਣਾਂਗੇ।
6: ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 1947 ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਟਾਈਟਲ ਬਟਵਾਰਾ 1947 ਹੈ।
2: ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: आप सुन रहे हैं SBS Hindi. मेरा नाम है नबील और एक नए शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है. शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वरुणजरी और वुईवुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है. तो आज के शो की शुरुआत होगी नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया से, निफा, जिसे न्यू साउथ वेल्स सरकार से 3 साल की फंडिंग मिली है. इसी के इम्पैक्ट और इसके मायनों पर हम बात करेंगे फेस्टिवल के एक समर्थक खुशाल व्यास के साथ. इसके बाद आएगी इंडिया रिपोर्ट, जिसमें हम लेकर आएंगे आपके लिए भारत की कुछ खास खबरें. फिर SBS एग्जामिन्स का एक खास अंश, जिसमें हम समझेंगे कि डिजिटल मीडिया, न्यूज़ और क्लिक बेट कॉन्टेंट का एंडलेस स्क्रोल कैसे हमारी सोच और कॉन्टेंट कंजम्पशन को बदल रहा है और एल्गोरिथम इसमें क्या रोल निभाते हैं. और अंत में SBS हिंदी की फाइनेंस सीरीज मनी मैटर्स का आज 5वां और आखिरी एपिसोड होगा, जो फोकस है ओवरसीज मनीज ट्रांसफर पर. अगर आपने कभी फैमिली को पैसे भेजे हैं या बाहर से कोई बड़ी रकम रिसीव की है तो ये एपिसोड आपके लिए खास तौर पर है. इसमें हम समझेंगे कि लिमिट क्या होती हैं, टैक्स के इम्प्लिकेशन क्या होते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग और ATO के कुछ बहुत ही ज़रूरी रूल्स जो अक्सर लोगों को पता नहीं होते. तो ये सारी रिपोर्ट्स एक एक करके आएंगी. और आज के शो में हमारे पास आपके लिए एक कॉन्टेस्ट भी है, एक मूवी गिव अवे कॉन्टेस्ट है, जिसके बारे में मैं आपको इस न्यूज़ फ्लैश के बाद बताऊँगा. तो आप बने रहिए SBS हिंदी पर, जिसपे हम प्ले करने वाले हैं न्यूज़ फ्लैश और फिर आपसे पूछेंगे कॉन्टेस्ट का सवाल. बुधवार 17 जून की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन. एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि वर्ष 2024 ऑस्ट्रेलिया में ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतों के लिहाज से अब तक का सबसे घातक वर्ष रहा. इंडिपेंडेंट पब्लिक हेल्थ और ड्रग पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन पेनिंगटन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में ड्रग इंड्यूस्ड कॉजेस से 2,596 लोगों की मौत हुई, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 11% अधिक है. इनमें से 2000 से अधिक मौतें अनजाने में हुई. रिपोर्ट का अनुमान है कि ऑस्ट्रेलिया में अब ओवरडोज के कारण हर दिन औसतन लगभग 7 लोगों की मौत हो रही है. बिल क्रूज फाउंडेशन के रेवरेंड बिल क्रूज ने कहा कि ये आंकड़े एक चेतावनी की तरह हैं. उनका कहना है कि ड्रग डिपेंडेंस को आपराधिक नहीं बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा मानकर उसका इलाज किया जाना चाहिए. विक्टोरिया में एक नया कानून स्टेट पार्लियामेंट में पेश किया गया है, जिसके तहत बच्चों को गंभीर अपराधों के लिए भर्ती करने वाले एडल्ट्स को लाइफ इन प्रिजन तक की सज़ा हो सकती है. प्रीमियर जेसिंटा एलन ने कहा है कि ये कानून ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े उन लोगों को निशाना बनाता है जो कमज़ोर और असुरक्षित युवाओं का शोषण करके उनसे हिंसक अपराध करवाते हैं. विक्टोरिया की अटर्नी जनरल सोनिया किलकेनी ने कहा है कि ये बदलाव ऑस्ट्रेलिया और ओवरसीज में बढ़ते उस ट्रेंड के जवाब में है, जिसमें क्रिमिनल नेटवर्क, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके बच्चों को अपराधों के लिए भर्ती कर रहे हैं और उनसे ऐसे अपराध करवा रहे हैं जिनसे समाज को बड़ा नुकसान होता है. सरकार का कहना है कि ये बदलाव उन लोगों को निशाना बनाने के लिए हैं जो इन अपराधों की योजना बनाते और उन्हें चलाते हैं, न कि उन बच्चों को जो इनका शिकार बनते हैं. ऑस्ट्रेलिया में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स के लिए 15% वेतन वृद्धि लागू की जा रही है, ताकि चाइल्ड केयर सेक्टर में वर्कर्स की कमी को दूर किया जा सके. ये वेतन वृद्धि दिसंबर 2024 से धीरे धीरे लागू की जा रही है. इसे परिवारों के लिए फीस में बढ़ोतरी की सीमा से जोड़ा गया है और इसका उद्देश्य वर्कर्स को लंबे समय तक बनाए रखना यानी स्टाफ रिटेंशन है. शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने कहा है कि बेहतर वेतन से एजुकेटर्स को आकर्षित करने और उन्हें रिटेन करने में मदद मिल रही है. सरकार का कहना है कि जिन चाइल्ड केयर सेंटर्स ने ये वेतन वृद्धि अपनाई है, वहां उन सेंटर्स की तुलना में फीस में कम बढ़ोतरी दर्ज की गई है जिन्होंने इसे लागू नहीं किया. नए आंकड़ों से संकेत मिलता है कि बाय नाउ पे लेटर सेवाओं पर सख्त नियमों से उन ऑस्ट्रेलियाई लोगों की पहचान पहले हो पा रही है जो कर्ज की समस्या से जूझ रहे हैं। क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी इक्विफैक्स के डेटा के अनुसार एक साल में फाइनेंशियल हार्डशिप की औपचारिक रिपोर्ट करने वाले बोरोवर्स की संख्या बढ़ी है। ये संख्या 0.06% से बढ़कर 0.24% हो गई है जब इस सेक्टर को नेशनल क्रेडिट लॉस के तहत लाया गया। नए नियमों से वित्तीय तनाव यानी फाइनेंशियल स्ट्रेस ज्यादा दिखाई दे रहा है और लोगों को समय पर सहायता लेने में मदद मिल रही है, साथ ही मिस्ड पेमेंट रेट्स में भी सुधार देखा गया है। डेटा के अनुसार बाय नाउ पे लेटर बोरोवर्स में फाइनेंशियल हार्डशिप की दर मॉर्गेज होल्डर्स की तुलना में कम है। ये दर बाय नाउ पे लेटर के लिए 0.24% और होम लोन्स के लिए 0.5% दर्ज की गई है। इसराइल के ऑस्ट्रेलिया में राजदूत ने उन आरोपों से इनकार किया है जो ग्लोबल सुमट फ्लोटिला पर सवार ऑस्ट्रेलियंस ने लगाए हैं। उनका कहना है कि ये आरोप तथ्यों से मेल नहीं खाते। इस फ्लोटिला में शामिल 11 ऑस्ट्रेलियाई लोगों को गाजा के लिए सहायता पहुंचाने की कोशिश के दौरान इसराइल ने हिरासत में ले लिया था। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC में एक आधिकारिक सबमिशन में शामिल होकर यह आरोप लगाया है कि हिरासत के दौरान उन्हें टॉर्चर, सेक्सुअल वायलेंस और अन्य दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसराइल के ऑस्ट्रेलिया में एम्बेसडर डॉक्टर हिलेल न्यूमैन ने ABC को बताया कि ये दावे झूठे हैं। और अब खबर भारत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बायलेटरल मीटिंग करेंगे। इस बैठक में इकोनॉमिक ग्रोथ, सप्लाई चेन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप्स और ग्लोबल सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले मंगलवार को फ्रांस में G7 समिट के आउटरीच सेशन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। भारत को 52nd G7 समिट में पार्टनर कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वर्ल्ड लीडर्स के साथ चर्चा करेंगे। ये था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi। SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी अभी आपने सुना न्यूज़ फ्लैश और अब शो को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि मैंने न्यूज़ फ्लैश से पहले कहा था कि आज हमारे पास शो में एक मूवी का गिव अवे कॉन्टेस्ट सवाल भी है, तो वो पहले पूछ लेते हैं आपसे। निफा जो नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया है 2026, उस फेस्टिवल में एक स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है बॉबी देओल की नई मूवी बंदर की। और ये जो है ख़ास तौर पे मेलबर्न के सुनने वालों के लिए है जो मेलबर्न में आ सकते हैं, क्योंकि ये स्क्रीनिंग होने वाली है संडे को। और आपको सिर्फ ये बताना है कि जो फिल्म बंदर आने वाली है बॉबी देओल की, उस फिल्म के डायरेक्टर कौन हैं, और आपको उसमें अपना नाम और ईमेल एड्रेस ज़रूर लिखना है। तो 04397997667 पर अपना जवाब भेज दीजिए। और यही कॉन्टेस्ट आज हमने दिन में शुरू किया था सोशल मीडिया के ज़रिए, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर, और कई लोगों के मैसेज आ चुके हैं। कुछ लोगों जिन्होंने अपना जवाब भेजा है उनका मैं नाम पढ़ देता हूँ कि जसलीन, सौरव, रिची, संजीव, पल्लव और सिल्विया, इनके जवाब हमें मिल चुके हैं और काफ़ी और एंट्रीज आ रही हैं। तो जो लोग रेडियो पे सुन रहे हैं और जिन्होंने हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे ये पोस्ट नहीं देखी है, तो ज़रूर हमारे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए और अपना जवाब भी भेजिए। 04397997667 कौन है बॉबी देओल की आने वाली मूवी बंदर के इस मूवी का डायरेक्टर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जब तक आपके जवाब आते हैं, और इसी फेस्टिवल से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको सुनाते हैं। निफा यानी नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया अप्रैल से ऑस्ट्रेलिया भर के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों का दौरा कर रही है और अलग अलग शहरों में इसके मूवी प्रीमियर्स हो रहे हैं। और न्यू साउथ वेल्स की जो राज्य सरकार है उसने 3 साल की फंडिंग भी अब इसे दी है। ऐसे में हमने चर्चा की है फेस्टिवल के समर्थक कुशाल व्यास के साथ और उनसे समझा है कि इस फंडिंग के क्या मायने हैं। आइए सुनते हैं वैशाली जैन की ये रिपोर्ट।
3: दोस्तों, नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी नीफा जो कि अप्रैल में शुरू हुआ था और अब सिडनी में फिर एक बार है, लेकिन इस बार इसके पास एक कुछ खास बात भी है। न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट के साथ एक 3 साल लंबा करार हुआ है नीफा का, जिसके अंतर्गत ये फिल्म प्रदर्शित करेगा हर साल। आज इसी पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुशहाल व्यास, जो कि नीफा से जुड़े हुए हैं और हमसे चर्चा कर रहे हैं कि अब तक का सफर कैसा रहा और कितना जरूरी है ये सफर। कुशाल, सबसे पहले तो SBS हिंदी में आपका स्वागत है।
4: नमस्ते विशाली।
3: कुशाल, क्या कर रहे हैं आप नीफा के साथ इस समय और किस तरीके का अब तक का आपको लगता है कि नीफा का सफर रहा है?
4: विशाली, मैं थोड़ा इंग्लिश में बात करता हूँ क्योंकि मैं गुजराती बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा हिंदी सब हिंदी पिक्चरों से समझ सकता हूँ, इसलिए तो इंग्लिश में बात करता हूँ, लेकिन थोड़ा कोशिश करता हूँ हिंदी में। तो विशाली, माय कनेक्शन विद नीफा इज लार्जली, आई वाज अ फॉर्मर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन फिल्म काउंसिल एंड आई एम इन्वॉल्वड इन वेरियस डिफरेंट रोल्स इन द ऑस्ट्रेलियन Indian community and broader multicultural scene. So with NIFA, honestly, my biggest role really is just as a supporter. And I'll be emceeing. I emceed the Sydney launch, and I'll be hosting the Melbourne program that's coming up tomorrow as well. The connection here is largely that I see as a supporter is honestly something where, as a person of the Australian Indian diaspora, I get the opportunity to actually see and support what impact that film has. I know what impact film has had on me. मैंने कहा था कि मेरा हिंदी is only like even possible समझ सकता हूँ क्योंकि बहुत हिंदी पिक्चर देख लिया। तो film obviously has an impact, and we want to see that film impact across the board, not just people of Indian heritage, but across the board and into other audiences in Australia as well. And so far, it seems like it's been doing really well. You know, it's a national festival that's been hitting runs in metropolitan areas, but also hitting into the regions as well. So it's very cool to see that audience is expanding and that engagement is becoming a lot more meaningful through both government but also on grassroots engagement as well.
3: इससे पहले SBS हिंदी के साथ हुई अपनी बातचीत में नीफा के संस्थापक अनुपम शर्मा ने ये हमको बताया था कि क्यों नीफा को, यानी नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ ऑस्ट्रेलिया को, रीजनल्स में, क्षेत्रीय इलाकों में ले जाना आवश्यक था।
5: हम ये भूल जाते हैं मेलबर्न सिडनी में कि दूर दराज के एरियाओं में कितने भारतीय समुदाय के लोग बहुतायत में हैं, ना सिर्फ फिल्में नहीं देख पाते बल्कि उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें वो अपने सिनेमा, अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को अपने ऑस्ट्रेलियन पड़ोसी से शेयर करें। हम आप भारतीय समुदाय के लोग तो घराती हैं, हमें बरातियों को बुला, जो गैर भारतीय समुदाय के लोग हैं हमें उनको बुलाकर अपनी फिल्में दिखानी है। तो आप और हम तो हिंदी फिल्मों की चर्चा कर ही सकते हैं, आप भी वहीं से हैं, मैं भी वहीं से हूँ, लेकिन बहुत जरूरी है मेरे लिए कि निजी तौर पे, व्यावसायिक तौर पे, कि जो भारतीय नहीं है उनको मैं अपनी संस्कृति, अपनी फिल्में, अपने दृष्टिकोण के बारे में बताऊं, उसी से हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी बना सकते हैं।
3: इसी चर्चा को जब हमने खुशहाल के साथ आगे बढ़ाया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप जब अपनी जेनरेशन को देखते हैं और अब जिस तरीके का इंडिया एक्सपोजर है, दोनों ही सिचुएशंस में फिल्म्स को कितना इंपॉर्टेंट पाते हैं?
4: मुझे लगता है कि फिल्म तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द सेंस के आई एम नॉट वन दैट इज, यू नो, सुपर स्टार स्ट्रक इन दैट सेंस, विद द एक्सेप्शन ऑफ शाहरुख खान, इफ आई सॉ हिम आई'd बी वेरी वेरी स्टार स्ट्रक, बट फिल्म इज मच मोर डीप देन जस्ट इट्स इंपैक्ट इन जनरल पॉप कल्चर एंड यू नो इन माय जनरेशन, इन ओल्डर जनरेशंस, इन यंगर जनरेशंस, इट्स अ बिग पार्ट ऑफ द हाउसहोल्ड, इट्स अ बिग पार्ट ऑफ पीपल गोइंग आउट सीइंग वाचिंग स्टोरीज। I think the impact, though, is for people of Indian heritage, it is a connection with culture, because Indian film has become so much more mainstream in many ways, or going in that direction. That connection with culture is becoming more significant, more accepted. They can feel more comfortable in who they are and celebrate a big part of that cross-cultural heritage in many ways. But I think the broader picture, both to Indians and non-Indians alike, is that film is about storytelling, it's about shared connection. And so you don't need to be Indian to watch an Indian film in the same way that you don't need to be German to watch a German film, and so on and so forth. Humans connect with stories, and at a time where the world seems increasingly divided, film is that sort of connecting the conduit between different communities, understanding themselves better through storytelling. So I feel there's a much sort of softer power in film that gets talked about less, but is probably the most significant part of this entire thing.
3: Let's talk a little about New South Wales government supporting NIFA. जो New South Wales government का बिल्कुल अभी अभी अनाउंसमेंट आया है NIFA को सपोर्ट करने के लिए, कितना जरूरी है स्टेट गवर्नमेंट्स का या रीजनल पावर्स का, रीजनल गवर्नमेंट्स का, लोकल काउंसिल्स का इस तरीके के फेस्टिवल्स को सपोर्ट करना, और आपकी ओपिनियन में NIFA बाकी के फिल्म फेस्टिवल्स से किस तरीके से अलग रहा है?
4: बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई डिवाइड दैट इन टू. तो गवर्नमेंट का सपोर्ट तो बहुत एसेंशियल है, तो वो सब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस और सब फेस्टिवल्स, तो दे वुड से दैट, बट इट इज वेरी वेरी ट्रू. रीजन बीइंग के देयर इज ओनली सो मच वन कैन डू इन ग्रोइंग समथिंग फ्रॉम द आउटसेट. आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू नो अनुपम शर्मा इन द वर्क दैट हीज डन टू ब्रिंग NIFA टू वेयर इट इज इन सच अ शॉर्ट टाइम, दैट इट्स गॉन ट्रूली नेशनल. बट आई थिंक दैट विद गवर्नमेंट सपोर्ट इट इज एक्चुअली फाइनली शोइंग दैट गवर्नमेंट इज पुटिंग इट्स money where its mouth is. That, you know, hum sab suna hai ki Australia India ka connection bahut important hai, or you know, those sorts of speeches we hear very often, but it is very significant that the investment, the sort of support that could actually have an impact on the ground is had. And so this investment, to see that the government values these sorts of festivals, that it values these contributions to the arts, is something that's to be congratulated. But it also means that it becomes sustainable. Ke ye sab, you know, ek do saal ke liye hota hai, phir we never hear from it again. This gives it actual sustainability to see that it continues and becomes a part of, you know, the New South Wales experience in many ways, you know, with this New South Wales government grant. So it becomes something that is looked forward to year in, year out. And the second part to your question was just about the regions, and I think this is a very important question and a very important part of what NIFA brings. We are obviously very lucky in metropolitan cities, okay? We have good exposure to various different cultures and various different experiences. Regional hubs often have very diverse populations and are very, very keen in exploring these sorts of connections, but have less accessibility to it. So the good thing about NIFA is, you know, it's gone to Dubbo, it's gone to Broken Hill, it's gone up to Darwin, it's going to all across the country, which means that we aren't just exposing NIFA or Indian film more generally just to audiences who already watch Indian film, right? They are going to people who otherwise, particularly in regional areas,

0: SBS South Asian. Your news from here and hits from home.
1: SBS Audio.
2: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं.
3: यही जाओ दादिया. चुनबा हाल में.
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है.
8: Far from the partisan politics.
7: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं. SBS Audio ऐप डाउनलोड करें या फिर
1: sbs.com.au/audio.
9: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी. मेरा नाम है नबील और एड ब्रेक के बाद हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अब वक्त हो गया है इंडिया रिपोर्ट का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारत की कुछ खास खबरें.
10: पश्चिम एशिया तनाव और समुद्री व्यापार पर इसके असर का मुद्दा भारत ने G7 शिखर सम्मेलन में उठाया है. फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित इस सम्मेलन के आउटरीच सत्र को प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को संबोधित किया. समुद्री व्यापार मार्गों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में की. हाल ही में अमेरिकी कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी. वैश्विक सहयोग में समानता, साझी जिम्मेदारी और सहयोग की भावना को आधार बनाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया. उन्होंने भारत के पक्ष को सामने रखते हुए कहा कि भारत मानवता सर्वोपरि के सिद्धांत को मानता है. आपको बता दें कि G7 दुनिया की 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है. भारत को इसमें विशेष आमंत्रित देश के रूप में बुलाया जाता है. सम्मेलन के इतर आज प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होनी है. इस द्विपक्षीय वार्ता में बहुचर्चित व्यापार समझौते को लेकर चर्चा होगी. समझौते को लेकर ज्यादातर तकनीकी काम पर पहले ही दोनों देशों के बीच सहमति बन चुकी है. इस बैठक में भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत की संभावना है. और अब चर्चा नीट परीक्षा की, जिसको लेकर देश में राजनीति गरमाई हुई है. नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा, जो मेडिकल छात्रों के लिए आयोजित की जाती है, इसमें गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर छात्रों में गुस्सा है. पिछली बार पेपर लीक के कारण 21 जून को पुनर्परीक्षा आयोजित की जा रही है. इस बार कोई गड़बड़ी न हो, इसको लेकर केंद्र सरकार सजग है. सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है. इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इसी मुद्दे पर अभियान की शुरुआत कर रहे हैं. छात्रों की गूंज नाम से शुरू किए जा रहे इस अभियान के लिए आज राहुल गांधी राजस्थान के कोटा पहुंच रहे हैं. यहाँ वे छात्रों के साथ संवाद करेंगे. छात्र और उनसे जुड़ी समस्याओं के मुद्दे पर कोटा के बाद प्रयागराज, पटना और दिल्ली में भी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे. कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान सरकार पर कार्यक्रम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है.

0: कोचिंग हब के रूप में पहचान रखने वाले कोटा शहर में हजारों छात्र रहते हैं। कार्यक्रम में छात्रों को आने से रोकने के लिए प्रशासन दबाव डाल रहा है, ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत इस बारे में कहते हैं,
1: जिस प्रकार से एक के बाद एक पेपर लीक हुए हैं और विश्वास समाप्त हो गया है, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा इश्यू बन गया देशव्यापी।
0: वहीं भाजपा ने पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पर पलटवार किया है। भाजपा की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष मदन राठौर कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए कहते हैं,
2: पेपर लीक कांग्रेस के राज में हुए, बीजेपी के राज में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। जहां तक ये नीच की बात करते हैं, तो ये आप सबको पता है कि ये कहां से शुरू हुआ, केरल से। केरल में हमारा शासन नहीं था, वहां से शुरू हुआ। फिर व्हाट्सएप पे एक दूसरे को गुणित अनुपात में लोग भेजते गए, तो उसमें बीजेपी का क्या दोष।
0: छात्रों के मुद्दे पर कॉकरोच जनता पार्टी भी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। व्यंगात्मक ऑनलाइन अभियान से शुरू हुए कॉकरोच जनता पार्टी देश भर के शहरों में प्रदर्शन कर रही है। नीट और अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। मंगलवार को नागपुर में प्रदर्शन किया गया। इसके पहले जयपुर में प्रदर्शन के दौरान पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। अभिजीत ने इसके पीछे आरएसएस का हाथ होने का आरोप लगाया है। आंदोलन को बदनाम करने के प्रयास को लेकर अभिजीत कहते हैं,
3: आज जो लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, आज जो लोग हमें नेपाल बांग्लादेश में जो हुआ उससे कंपेयर करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे, वही लोग थे जो इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। भारत एक ऐसा देश है जो आंदोलन से आजाद हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जो आंदोलन की वजह से आज भी एक लोकतंत्र है। तो ये देश लोकतंत्र से बना है, ये देश आंदोलन से बना है, आंदोलन से टिका हुआ है, और आंदोलन इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी।
0: अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में बिसात बिछनी शुरू हो गई है। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में हुई गड़बड़ी का मुद्दा बड़ा और राजनीतिक बनता जा रहा है। अब इसकी जांच एसआईटी के हवाले है। संदिग्धों के अलावा राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों और पुजारियों से भी जानकारी ली जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है।
4: जिस प्रदेश में नौकरी रोजगार के लिए आईआईटी बनना था, वहाँ एसआईटी बन रही है। कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। ये डबल इंजन की बड़ी डबल टंकियां हैं, और हमारे साधु संतों, पुजारी और मंदिर में जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनके लिए जांच के लिए बताओ, अधिकारी जांच करेंगे, इन अधिकारियों की एसआईटी कौन कराएगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कहते हैं,
5: भाई अगर संत हो, सबसे बड़े तो भक्त हो भगवान के, उसी के नाते गेरुआ बने हैं आप, उसी के नाते मुख्यमंत्री बने हैं, तो भाई बुलडोजर चलवाइए ना। जो चढ़ावा जो चोरी हुई है, चढ़ावा चोरी, उसमें अभी तक ईडी की एंट्री क्यों नहीं हुई? अब तक तो भारतीय की एंट्री हो जाती ईडी की।
0: भाजपा ने इस पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। राज्य की भाजपा सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार और अपराध में कमी आई है। मंगलवार को एक कार्यक्रम में बोलते हुए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पहचान में सकारात्मक बदलाव आने का दावा किया।
6: अब यूपी की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज से है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से है, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन से है।
0: उत्तर प्रदेश के बाद चर्चा महाराष्ट्र की, जहां राजनीति गरमाई हुई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में हुए टूट के बाद अब बारी शिवसेना उद्धव गुट की है। इसके 9 में से 6 लोकसभा सांसद बगावत कर सकते हैं, इसकी चर्चा जोरों पर है। पार्टी नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि सांसदों को पाला बदलने के लिए बड़ी धनराशि ऑफर की जा रही है। इन सांसदों को पाला बदलने से रोकने के लिए पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे खुद सक्रिय हैं। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
7: آپ سن رہے ہیں SBS ہندی, میں ہوں نبیل. اور انڈیا رپورٹ کے بعد اب وقت ہو گیا ایک ایڈ بریک کا, لیکن ایڈ بریک سے پہلے آج کا جو کانٹیسٹ سوال ہے وہ ایک بار آپ سے پھر سے پوچھ لیتے ہیں. کافی انٹریز آ رہی ہیں اور اگر آپ نے اپنا جواب ابھی تک نہیں بھیجا تو آپ بھی بھیج دیجئے. یہ کانٹیسٹ ہے نفا سے جڑا ہوا, یعنی نیشنل انڈین فلم فیسٹیول آف آسٹریلیا. خاص طور پر یہ جو مووی ٹکٹس ہیں یہ میلبرن کے لیے ہیں, تو اگر آپ میلبرن سے ہیں تو ضرور اگر آپ میسج میں لکھ دیں گے کہ آپ میلبرن سے ہیں تو اور اچھا ہوگا. سوال یہ ہے کہ بابی دیول کی جو مووی آنے والی ہے بندر, اس مووی کے ڈائریکٹر کون ہیں؟ آپ اپنا جواب اپنے نام اور ای میل ایڈریس کے ساتھ 04397997667 پر بھیج سکتے ہیں. یہ اس مووی کا پریمیئر ہونے والا ہے اس فلم فیسٹیول میں اس 21 جون یعنی سنڈے کو, اور یہ میلبرن میں ہونے والا ہے اور 6 بجے شام میں اس کا پریمیئر ہوگا. تو اگر آپ بھی اس میں آنا چاہتے ہیں تو ڈبل مووی پاس جیتنے کا موقع ہے. سوال ایک بار پھر سے دہرا دیتا ہوں کہ بندر مووی جو نئی مووی ہے بابی دیول کی, اس کے فلم ڈائریکٹر کون ہے؟ 04397997667 ہمارا نمبر ہے. اپنا نام اپنا ای میل ایڈریس, اور اگر آپ میلبرن رہے ہیں تو ضرور مینشن کریے گا کیونکہ یہ خاص طور پہ میلبرن کے لیے ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے اور پھر کچھ گانوں کا سمے ہو گیا ہے اور کچھ آخری رپورٹس. بنے رہیے SBS ہندی پر.
8: اس وگیاپن کو ایک ناٹی پرمانت دوبھاشیے نے انوادت کیا ہے.
9: This ad is interpreted by a Naughty certified interpreter.
8: ایک پرمانت دوبھاشیے کے ساتھ آپ جو کہنا چاہتے ہیں اسے ہندی میں ٹھیک ویسے ہی کہہ سکتے ہیں.
9: With a certified interpreter, you can express exactly what you want to say in Hindi.
8: اور آپ کی کہی ہوئی بات پرائیویٹ رہتی ہے اور بدلتی نہیں ہے.
9: And what you say stays private and unchanged.
8: کیونکہ ہم سب کا یہ ادھیکار ہے کہ ہماری بات کو سمجھا جائے.
9: Because we all deserve to be understood.
8: ایک ناٹی پرمانت دوبھاشیے کے لیے پوچھیں naughty.au/interpreter پر اور ادھک جانکاری پائیں.
10: SBS نیوز ان ڈیپتھ پوڈ کاسٹ, دیش اور دنیا بھر کے سماچار جو اہمیت رکھتے ہیں, سنیے SBS نیوز ان ڈیپتھ آپ کے پسندیدہ پوڈ کاسٹ ایپ پر یا sbs.com.au/audio پر جائیں. SBS ورلڈ نیوز, بریکنگ نیوز اور ابھرتی ہوئی کہانیاں جو آپ کے لیے معنی رکھتی ہیں, آسٹریلیا اور دنیا بھر سے دیکھیے SBS ورلڈ نیوز ہر رات 6:30 بجے SBS اور SBS آن ڈیمانڈ پر. چینل 33 پر SBS فوڈ جو پروستا ہے سب سے سوادشت جگہیں, ستھانی اور انتراشٹری بھوجن میں بڑے نام. SBS فوڈ چینل 33 پر 24 گھنٹے.
11: Like your music? We have got you covered on SBS South Asian. There are shows like The Bollywood Session every morning and evening, 3 hours every day of just the hits from Bollywood. Need a party playlist? There's Desi Dance Party on Friday and Saturday nights. It's your weekend soundtrack. Enjoy Punjabi music. Don't miss Bhangra hits on weekend afternoons. Find your next favorite SBS South Asian show on the SBS Audio app, website or SBS On Demand.
12: sbs.com.au/hindi کو اپنا آن لائن ہوم بنائیے, تازہ ترین خبریں اپنی بھاشا میں پائیے. sbs.com.au/hindi پر جائیں. کیا آپ کو SBS ہندی سننا اچھا لگتا ہے؟ اپنی بات چیت ہم سے جاری رکھیے ہمارے فیس بک پیج پر. ہمارا پیج لائک کریں. SBS ہندی فیس بک پر بھی ہے.
7: SBS ہندی پر آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے, اور اب سمے ہو گیا ہے ایک گانے کا. گانا سنیں گے اور بہت ہی آئیکونک گانا ہے اور شاہ رخ خان کی مووی کا گانا ہے, وہ ہم سنیں گے. لیکن ایک چیز بتا دیں کہ اس گانے کے بعد ہم واپس آئیں گے اور آپ کو لے کے چلیں گے ایک خاص رپورٹ میں SBS ایگزامنس میں, جس میں آج بات ہوگی سوشل میڈیا اسکرولنگ کی. تو اس رپورٹ کا بھی آپ انتظار کریے گا اور ضرور سنیے گا. میں آپ کو ملتا ہوں اس گانے کے بعد.

0: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मैं हूं नबील और अब वक्त हो गया है हमारे शो के आखिरी रिपोर्ट का। आज हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं हमारी जो फाइनेंस से जुड़ी खास श्रृंखला है मनी मैटर्स, उसका पांचवा और आखिरी एपिसोड। अगर आपने कभी भारत या विदेश में परिवार को पैसे भेजे हैं या विदेश से कोई बड़ी रकम प्राप्त की है या करने वाले हैं तो मनी मैटर्स का ये एपिसोड आपके लिए ज़रूर है। इसमें हम समझेंगे कि विदेश में मनी ट्रांसफ़र की क्या सीमाएँ होती हैं, क्या उन पर टैक्स लगता है, कौन से रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है और ATO तथा ऑस्ट्रैक के वो अहम नियम क्या हैं जो कई लोगों पर लागू होते हैं लेकिन अक्सर उन्हें पता नहीं होते। आइए सुनते हैं स्वाति शर्मा की तरफ से ये जो खास सीरीज है मनी मैटर्स, उसका पांचवा और आखिरी एपिसोड।
1: आप सुन रहे हैं
0: मनी मैटर्स,
1: SBS हिंदी की नई श्रृंखला, अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में।
2: नमस्कार, मैं हूँ स्वाति शर्मा और आप सुन रहे हैं SBS हिंदी की सीरीज मनी मैटर्स। इस सीरीज के द्वारा हमारी कोशिश है कि टैक्स सीजन से पहले हम उन सवालों के जवाब ढूंढ पाएं जो हर साल हमारे समुदाय में अक्सर पूछे जाते हैं। आज का विषय है विदेश पैसे भेजना और रिसीव करना और उसके क्या टैक्स इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हमारे समुदाय में ये बात बहुत कॉमन है, जहाँ परिवार में अपने माता पिता को महीने महीने पैसे भेजे जाते हैं या फिर किसी भाई बहन की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए पैसे भेजे जाते हैं या कभी कभी इंडिया से पैसे मंगवाए भी जाते हैं, जैसे कि पेरेंट्स ने कोई प्रॉपर्टी बेची या फिर कोई विरासत में कोई गिफ्ट मिला। एक बेसिक सा रूल है जिसे जानना ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज़ पैसे भेजने पर कोई लिमिट नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कितने भी पैसे भेज सकते हैं, पर तीन चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं। एक, अगर एक ट्रांसफ़र $10,000 से ज़्यादा का है तो बैंक या रेमिटेंस सर्विसेज ऑटोमेटिकली उसकी रिपोर्ट ऑस्ट्रैक को करती हैं। ऑस्ट्रैक ऑस्ट्रेलिया की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, पर यह सिर्फ मॉनिटरिंग का एक तरीका है। और दूसरा, अगर वो पैसा आपकी इनकम था या फिर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न था तो उसे टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करना ज़रूरी है। और तीसरा, अगर वो पैसा पहले से टैक्स पेड इनकम से आया है तो आप पर टैक्स नहीं लगेगा, पर रिकॉर्ड रखना फिर भी ज़रूरी है। इसी बारे में विस्तार से बात करेंगे आज पुनीत सिंह के साथ, जो विक्टोरिया में एक रजिस्टर्ड टैक्स एजेंट हैं। पुनीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका SBS हिंदी पर। तो पेरेंट्स या भाई बहन को इंडिया पैसे भेजना या फिर गिफ्ट भेजना, ये अक्सर हमारी कम्युनिटी में देखा जाता है, तो बताइए कि गिफ्ट और इनकम में क्या फ़र्क है और क्या ये फ़र्क टैक्स के हिसाब से मैटर करता है और क्यों?
3: थैंक यू स्वाति जी। जी, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वाति जी। हमें अक्सर आए दिन लोग फ़ोन करते हैं, पूछते हैं मुझे पैसे सेंड करने हैं, मुझे पैसे मंगवाने हैं। सो दिस टॉपिक इज़ क्वाइट रेलेवेंट फॉर अस। जब आप पैसे यहाँ से सेंड करते हो, अगर तो वो आफ्टर टैक्स मनी है, फॉर एग्जांपल आप अपना टैक्स पे करने के बाद जो आपके पास सेविंग है उससे पैसा भेज रहे हो, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आप, लेट्स से आपकी 70,000 की इनकम है और नियरली आपने 110,000 ऑलरेडी भेज दिया हुआ है इंडिया में, तो देन समथिंग इज़ देयर। सो रेड फ्लैग वहीं से शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितने भी आपकी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वेस्टर्न यूनियन, चाहे रेमिटली, एनी प्लेटफॉर्म, दे शेयर डेटा विद ATO विद ऑस्ट्रैक। सो वहीं से ये सारी जानकारी कलेक्ट हो जाएगी कि आपकी इनकम इतनी है, जो आपने डिक्लेयर की है थ्रू आउट द ईयर, आपने इतना भेजा है, सो दैट विल नॉट गोना मैच। सो ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर तो आप आफ्टर टैक्स चीज़ें भेज रहे हो, आफ्टर टैक्स जो आपकी सेविंग है, शुडन बी एनी प्रॉब्लम। बट अगर आप वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, देन यू आर डेफिनेटली इन हॉट वाटर।
2: तो अगर इंडिया से कोई बड़ी रकम रिसीव होती है, जैसे कि कोई इनहेरिटेंस है या फिर फैमिली की प्रॉपर्टी की बिक्री होती है या कभी कभी पेरेंट्स भी गिफ्ट भेजते हैं, तो क्या उसे यहाँ डिक्लेयर करना ज़रूरी है और क्या उस पर टैक्स लगता है?
3: आपको डिक्लेयर नहीं करना स्वाति जी यहाँ पर, बट ऐसा होता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप जो उस इनकम के ऊपर आप इंटरेस्ट अर्न करते हो थ्रू आउट द ईयर, उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको टैक्स देना होता है। और वो जो आपका बैंक होता है वो ATO को रिपोर्ट करता है कि थ्रू आउट द ईयर इतना आपने इंटरेस्ट अर्न किया है, एंड इसके ऊपर आपको टैक्स देना होता है। अगर आपके फैमिलीज इंडिया से पैसा भेज रहे हैं फॉर सम रीज़न कि उनको इन्वेस्ट प्रॉपर्टी के लिए हेल्प करना है बच्चे को या बेटी को या बेटे को, तो उस पर टैक्स नहीं है। बट यस, प्रॉपर रिकॉर्ड रखना पड़ेगा आपको कि यस, ये पैसा इंडिया से आया है, किस पर्पज़ के लिए आया है, एंड उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिला है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा।
2: तो जो लोग रेगुलरली पैसे भेजते हैं, कौन कौन से वो रिकॉर्ड्स हैं जो उन्हें रखने चाहिए, जो ATO उनसे मांग सकता है?
3: सी, जब इंडिया से आप पैसे यहाँ पर मंगवाते हो, ठीक है, पहले तो ये चीज़ देखनी कि पैसे भेज कौन रहा है। अगर तो आपके पेरेंट्स भेज रहे हैं, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी ओके। एंड मेक श्योर आप उनसे गिफ्ट लेटर लिखवा लीजिए कि दैट दिस इज़ द गिफ्ट एंड दे आर नॉट टेकिंग दिस बैक, राइट। सेकेंडली, कई लोग अपना अकाउंट इंडिया में भी होता है, वो वहाँ से पैसा मंगवाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। मेक श्योर कि वो जो पैसा उनके अकाउंट में पड़ा है या आया, उनके पास एक वैलिड रीज़न हो कि वो पैसा उनके अकाउंट में कैसे आया। क्योंकि अगर आप वो डिक्लेयर नहीं कर रहे, लेट से आपने इंडिया में प्रॉपर्टी सेल की है एंड वो आपने वहाँ पर पैसा इकट्ठा किया हुआ बट यहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया हुआ, आपको वो रिपोर्ट करना होगा बिकॉज यू आर अ टैक्स रेजिडेंट। चाहे आपने ओवरसीज़ प्रॉपर्टी सेल की है, आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी होगी। सो मेक श्योर वो जस्टिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास। ATO 4 साल 5 साल पीछे भी जा सकता है अगर दे फाउंड आउट कि भाई आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ।
2: पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए। SBS हिंदी की सीरीज़ मनी मैटर्स में अब तक हमने बात की टैक्स सिस्टम के बेसिक से लेकर डिडक्शंस, साइड हसल्स, स्कैम्स और विदेश पैसे भेजने की। उम्मीद है इस सीरीज़ ने आपके कुछ सवालों के जवाब दिए होंगे और टैक्स सीजन को थोड़ा आसान बनाया होगा। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आई हो तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और इस श्रृंखला के अब तक के सभी भाग आप सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट sbs.com.au/hindi पर। SBS हिंदी पर इस श्रृंखला को आप तक लेकर आई स्वाति शर्मा, धन्यवाद।
1: SBS हिंदी की नई श्रृंखला
0: मनी मैटर्स,
1: अब फाइनेंस की जानकारी आसान भाषा में।
4: इस अंश में दी गई वित्तीय जानकारी सामान्य प्रकृति की है। SBS ना तो इससे सहमत है और ना ही असहमत। अपनी विशेष परिस्थिति के लिए किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।
0: SBS हिंदी पर आज मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारे एंट्रीज भेजी हैं जो हमारा आज का मूवी कॉन्टेस्ट था और इसके विजेता अनाउंस होंगे कल के शो में, तो नज़र ज़रूर रखिएगा हमारे सोशल मीडिया पर भी और रेडियो शो को भी ज़रूर सुनिएगा। और ये मूवी प्रीमियर होने वाली है बॉबी देओल की निफा फेस्टिवल में इसी संडे 21 जून को, ख़ास तौर पर मेलबर्न में। तो विजेताओं के नाम कल घोषित रहे होंगे और फिलहाल मैं आपसे लूंगा अलविदा एक आखिरी गाने के साथ और स्वादी के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द।

0: SBS साउथ एशियन।
1: यात्रियों से निवेदन है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध के सेटल हो जाएं क्योंकि इस रेलगाड़ी से बाहर जाने का कोई द्वार नहीं है।
2: बजाना।

0: Non-stop Bollywood. Don't stop.
1: The Bollywood session.
2: Don't stop.
1: On SBS South Asian.
3: त्याग की तरंगे सरगम बन जाती है, संगीत के हजारों धुने गूंजने लगती हैं।

खुशी के मैं बांटू के तुझे भी कम ना रहे। जो ढूंढने जाओगे मुझसे अच्छी वजह तो ढूंढ ना पाओगे, प्यार ऐसा उसमें नहीं शक मुझे। But I want you to stay।

बहार की, वो जा रहा है कोई शब-ए-गम गुजार की। वीरां है मैं कदा खुम्मो सावर उदास, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन

कि तुझको आए पसीना, शक्ल है इंडियन, बॉडी लटीना, चिकनी चमेली कट कट रीना, सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना, तूने यू तो किया बर्बाद, तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है, टीचर के लेक्चर याद हो ना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: Bollywood.
1: I love Bollywood music.
2: Kicking the morning off the right way. An hour of the best in Bollywood hits. Starting now. It's the Bollywood Session on SBS South Asian.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.